0: करके।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 a.m.

0: जाने का वक्त आ गया।
1: नहीं,
0: नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार बहन, अपने इस भाई को लागे नहीं बांधूंगी।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूं।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 2 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: नहीं नहीं बताऊंगी,
1: तुझे दिल की बात बता दूं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार ऑफ द वीक। आज के स्टार ऑफ द वीक के मेहमान है विवेक मुशरान, आदित्य पंचोली, मुकुल देव, सुमित सहगल और जुगल हंसराज। इन सभी के एक से बढ़कर एक गाने हैं और इन सब अदाकारों को लेकर आए हैं हमारे आदरणीय जाकिर मुरानी जी। जाकिर मुरानी जी थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे एक्टर्स देने के लिए और गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और बहुत से दोस्त जुड़े हुए सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे दोस्त हैं सरफराज सरफू भाई साउथ अफ्रीका से, वेलकम करते हैं। और सुनीता गोप जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है सुनीता गोप जी सरायकेला झारखंड से। और हमारे जंदाहा से सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है जंदाहा वैशाली बिहार से। और साथ ही साथ लवली सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और उनके बाद जुड़ गई हैं हमारी दीदी संजय पटेल जी, लिखते हैं कि तुम मुझे याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लिखते हैं कि तुम मुझे याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हें याद करते रहेंगे, तुम्हें देखने को दिल तरसता है और हम तेरे इंतजार में बैठे रहेंगे। आए हैं क्या बात है दीदी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, ये फाजिलका पंजाब से हैं। प्रमोद कुमार जी आगरा से हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हमारी कुंता बेनी जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं बांका बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और विजय राज जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है, दोस्ती दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है, दोस्ती ही सुख दुख की पहचान होती है, रूठ भी गए तो हम तो दिल पर मत लेना क्योंकि दोस्ती जरा सी नादान होती है। जी बिल्कुल भाई विजय राज जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और साथ ही साथ जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं जी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी सीतामढ़ी बिहार से जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और आज इनके यानी कि पापा जी भी साथ में सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है, आपको मेरा प्रणाम भी है। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी अभिषेक तिवारी जी। और एमडी फैज जी क्या कहते हैं, इनका भी वेलकम करते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज हैदराबाद से बोल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: और सब सुनाइए, सब बढ़िया है, खैरियत से है ना? एमडी फैज आलम
0: जी जी, तो हैदराबाद में क्या कर रहे हैं भाई, कहाँ पहुँच गए एकदम हैदराबाद में अभी है। नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। रवि मोहाड़े जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी रवि मोहाड़े जी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे शेख मोहम्मद ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि ना पूछो मुझसे मेरी मुस्कान की वजह, लिखते हैं कि ना पूछो मुझसे मेरी मुस्कान की वजह, तुम्हारे एक ख्याल से ही दिल खिल जाता है। और समुंदर सा गहरा है ये रिश्तों का दौर, समुंदर सा गहरा है ये रिश्तों का दौर, जहाँ खामोशी में भी सुकून मिल जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और यानी कि प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि ओपनिंग सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद। और सोनू पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है गाजीपुर से, तो आपका भी वेलकम है। और सभी दोस्तों का वेलकम करते हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सबसे पहला अगला जो आज का जो यानी कि सबसे पहला जो मैं गाना लेने वाला हूँ, उस गाने में बहुत से दोस्त शामिल हैं, ओ माय गॉड। सबसे पहले यानी प्रियंका जी शामिल हो रही हैं, और प्रियंका जी के साथ साथ मैं बता दूँ कौन कौन से दोस्त हैं इसमें। हमारे यानी कि गजानन जी का पूरा ग्रुप है, हमारे यानी कि फूलबाग संजू भाव जी हैं, और मिसाल अंगद जी भी हैं, और ये विष्णु यानी चंद्र जी भी हैं। तो सभी के गाने को मैं एक साथ प्ले करने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऑडियो वाले जो मैसेज हैं जैसे कि संजू भाव जी और मिसाल अंगद जी का, उनका मैं शामिल कर लेता हूँ क्योंकि जरूरी है।
2: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
2: अमन सर जी,
0: जी।
2: कैसन बानी?
0: बहुत बढ़िया बानी, रौरा पति कैसन बानी?
2: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी।
0: बढ़िया
2: अमन सर जी, मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है शुक्रवार और आज की अपनी थीम है स्टार ऑफ द वीक। और आज के कार्यक्रम में विवेक मोशरन, आदित्य पंचोली, मुकुल देव, सुमित सैगल और जुगल हंसराज, इन पांच अभिनेताओं को हॉटस्टार पर आमंत्रित किया है। और आज के कार्यक्रम में इन्हीं के गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने विवेक मोशरन जी, इनका एक फिल्म लिया है सर, फिल्म का नाम है सौदागर, और इसी फिल्म का एक गीत है सर जिसे मैं आपको गुनगुना के बोलता हूँ। एलो एलो क्या है ये एलो एलो, एलो का मतलब ILU, आई लव यू, हाँ आई लव यू। अमन सर जी, आप ये गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन में याद रखूँगा सर सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू,
2: वेलकम अमन सर जी, बाद में आपकी सुंदरता की मूर्त, उनको भी यह गीत में डेडिकेट करूँगा सर। धन्यवाद सर उनके लिए भी। और बाद में चुलबुली आवाज के मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आदरणीय आरजे परमार जी और रेडियो टस्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो टस्टार जो दीवाना बना दे, अमन जी के साथ मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और इसी बात पर हम मिसाल अंगा जी का भी ऑडियो सुन ही लेते हैं, क्या कहते हैं ये भी।
3: हेलो अमन सर
0: जी, जी
3: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ। और अमन सर जी आज स्टार ऑफ द वीक में जो सभी कलाकार है, तो ये 90s के बहुत सुपरहिट कलाकार है अमन सर जी, तो आज मैं सभी कलाकार को हटाकर विवेक मुश्रण इस कलाकार को चुनूंगा जो इनकी सुपरहिट फिल्म सौदागर, इस फिल्म का गाना मैं सुनवाना चाहता हूँ सभी दोस्तों को। अमन सर जी गाने के बोल है, इलू इलू क्या है, ए इलू इलू क्या है,
0: बताइए क्या
3: अमन
0: है?
3: सर जी ये गाना मैं सभी को सुनवाना चाहता हूँ, तो अमन सर जी सबसे पहले ये गाना आपके लिए, आपकी
0: so
3: सुंदरता की मूर्त के लिए।
0: फिर
3: हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेश भगत जी, मोहन नेवारे जी, हीरामन खेराड़े जी, फुले भक्त संजू भाऊ जी, अमोल कामले जी, आरजे वंशिका जी और दत्ता कदम जी, और मेरे जितने भी रेडियो हॉटस्टार के सभी दोस्तों के लिए मैं गाना स्पेशली डेडिकेट करूंगा। तो अमन सर जी गाना मेरे सभी दोस्तों को सुनवाना, धन्यवाद।
0: okay, जी और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले गाने की डिमांड की थी यानी प्रियंका जी, और प्रियंका जी के बाद ये सभी दोस्त हमारे गजानन जी का ग्रुप है और ये विष्णु एन चंद्र जी हैं, तो सभी दोस्तों की पसंद पर ये गाना। Enjoy the track, इलू इलू क्या है भाई, मुझे भी जानना है क्या है।

0: बिल्कुल इलू का मतलब ILU मतलब आई लव यू, इसलिए मैं कहता हूँ आई लव यू सुंदरता की मुरत जी। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी,
0: नमस्ते
1: प्रियंका जी और पूरे भक्त संजू भाव जी, गजानंद सोलोकर जी, पूरे ग्रुप का भाई अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। और हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त गजानंद सोलोकर जी, संजू भाव जी और मिसाल अंकल जी और प्रियंका जी, सभी की ग्रुप डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, शामिल रखने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि स्टार्टिंग में ही इतने औसम सॉन्ग इलू इलू सुनने को मिल गया, मजा आ गया। और फैज जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: सौदागर फिल्म का सुपरहिट गाना ये इलू इलू सुन के मज़ा आ गया। MD फैज आलम, सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि मुरादाबाद UP से के ये इलू इलू क्या है गाना, मुझे अच्छा लगा सच में। और कुंता बेन दिल्ली से लिखते हैं कि ये प्रियंका जी, संजू भाव जी, अंगद मिसाल जी, गजानंद सुलकार जी के पूरे ग्रुप की डिमांड लाजवाब, धन्यवाद देते हैं। और आत्माराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम भी आ गए हैं। जी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग से शुरुआत हो गया है, मजा आने वाला है। जी अगला भी जो डिमांड है, हम राजेश कुमार जी का इसी फिल्म से सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये गाना मतलब बहुत ही प्यारा है। और इन्जॉय द ट्रैक।

और इस गाने की आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मन हर उदास एंड सुखविंदर सिंह जी का है। गाना बहुत ही प्यारा है जो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच इस गाने का डिमांड करने के लिए। राजेश कुमार जी ग्रेटर।

अब मैंने गलत नाम दे दिया है और ये नाम सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी अभी अभी मैंने ये नहीं चेक किया, ये जो गाना है हमारे आरिफ सिंधी जी का है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी अभी मैंने यानी क्लिश इसको देखा है और ये गाना आरिफ सिंधी जी का है, आई एम सॉरी आरिफ सिंधी जी, ये गाना आपका ही है और मुझसे गलती हो गई है नाम ढूंढने में, सॉरी अगेन।

0: बिल्कुल सौदागर, सौदागर दिल ले ले दिल देकर गाना बहुत ही प्यारा लगा है। रवि मोहड़ा जी लिखते हैं कि इलू इलू क्या है ये इलू इलू गाना, लाजवाब लगा सुनकर, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे यानी संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है सौदागर सौदागर। और अशेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि दोस्तों को भी गले लगाना, दुश्मनों को भी गले लगाना, और फिर भी कोई गम हो तो इस रेडियो हॉटस्टार के नंबर पे फोन लगाना। अच्छा और विजय राज जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। और आत्माराम जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। और मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग कह रही हैं। और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: थैंक यू अमन सर इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए, वो फर्स्ट टाइम बात है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू। और अपने
0: क्या हुआ है आपकी आवाज़ इतनी सोलो की मार रही है,
1: चाहती हूँ जो कि इस तरीके से, जब पार्क में कोई फूल खिला तो हवे।

0: ओहो
1: इलू इलू
2: इलू इलू इलू इलू का मतलब आई लव
1: ओके जी वेलकम है। लेकिन बहुत सोलो गाया है आपने, थोड़ा सा खुल कर गाया कीजिए। अच्छा अच्छा गाती है ना, तो खुल कर गाया कीजिए। गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को व्यापार नमस्कार है, हम सबके गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए जी, वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: आर जे अमन साहब जी, आरिफ शिंदे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू,
1: वेलकम है आपका भी। और हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आरिफ शिंदे जी का डिमांड लाजवाब। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि सौदागर फिल्म के दोनों गाने बहुत लाजवाब लगे, एक्सीलेंट। नंदलाल जी लिखते हैं कि राजेश नहीं, उनका तो गाना ही नहीं है फिलहाल, हमारे आरिफ सिंधी जी का गाना था ये, उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुंता बेन लिखते हैं कि सौदागर गाना डिमांड, थैंक यू सो मच आरिफ सिंधी जी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
4: हेलो अमन सर,
1: बोलिए।
4: मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने हमारा सुनवाया अमन सर जी, तो हमको बहुत खुशी हुई। और अमन सर जी, मैं गाना शुरू हुआ था तभी फीडबैक देने वाला था, लेकिन आप खुद गाना गा रहे थे इसलिए मैंने आपका गाना पूरा सुना और बहुत मज़े के साथ गाना गाया आपने, हमको बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार आपने गाना गाया तो गाने की खूबसूरती भी बढ़ गई है अमन सर जी। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया, तो मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी, आज की आपकी आवाज़ हमको बहुत बहुत अच्छी लगी, और आज जिस प्रकार आप गाने सुनवा रहे हो तो हमको बहुत आज अच्छा लगने वाला है। धन्यवाद।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका भी। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ काजल झक्का जी का, और काजल झक्का जी सुनना चाहती है बहुत ही प्यारा गाना, ये दिल ये पागल दिल मेरा, हर पल तुझे आवाज दे।

0: बिल्कुल, ये दिल, ये पागल दिल हर पल तुझे आवाज दे। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी,
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये दिल ये पागल दिल मेरा बहुत ही बढ़िया गाना है जी, मजा आ गया सुन के। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग, मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये दिल ये पागल दिल मेरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी के पसंद एकदम झकास लगी है, एकदम धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानन सुरकार जी लिखते हैं कि काजल झक्का जी के पसंद ये दिल ये पागल दिल मेरा मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और कुंता बनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है काजल झक्का जी की, सच में मजा आ गया। इसी बात का अगला जो डिमांड है वो रश्मि जी का है, और रश्मि जी सुनना चाहती हैं, ए दिल हमें इतना बता दे, ए दिल हमें इतना बता दे। ओके, एंजॉय द ट्रैक फिल्म हमेशा से ये प्यारा सा गाना।

0: वेलकम बैक। वैसे गाना लंबा है और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि काजल झक्का जी के एकदम पसंद झकास लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और नंदलाल जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: चेहरा हसीन तेरा, ख्वाबों में मुस्कुराए,
0: बिल्कुल मुस्कुराए,

0: मेरा
1: हर पल तुझे, आवाज दे।
0: तुझे आवाज दे दिल। बहुत लाजवाब गाना, बहुत बेस्ट, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। जी ओके जी। और साथ ही साथ यहाँ पे रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बबीता जी आपका भी। और बाबूलाल जहाँ लिखते हैं कि ये इनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, नाम लिखा है उन्होंने रश्मि जी। अच्छा ओके। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, क्या लाइन है इस गाने की, थैंक यू थैंक यू। और आत्माराम जी लिखते हैं कि ऑल सॉन्ग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे शिल्पा बहन लिखते हैं कि ये रश्मि जी की पसंद, बहुत बहुत बहुत बढ़िया गाना है और बहुत ही शानदार, धन्यवाद देते हैं। और निर्मल राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, ये है यानी कि किशनगंज बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई निर्मल राय जी। और ये क्या कहते हैं प्रियंका जी, सुनते हैं।
2: हेलो
1: हेलो
2: अमन सर
1: जी,
2: वो जो फर्स्ट सॉन्ग था
1: हाँ,
2: वो थोड़ा नेटवर्क इशू के चक्कर में
1: अच्छा
2: अच्छे से नहीं सुना पाए,
1: कोई बात नहीं।
2: इसलिए सभी गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं एक्टरों में से एक एक्टर

0: जी हाँ, मैं आप में ले हैं।
1: क्या बात है।
0: जी हाँ, मैं आप में ले हैं।
1: ओके,
0: ये सॉन्ग मेरे प्रेम पुजारी के लिए
1: ओके था। जी, लेकिन फिलहाल ये गाने की डिमांड हमारे यानी कि बबीता जी ने किया, और इसी बात पर बबीता जी का गाना ही प्ले कर देता हूँ, क्योंकि अभी आपने गाना गा दिया इसे।

जी हमें आप मिले हैं, क्या बात है, क्या गाना है, सच में दिल खुश हो गया भाई। और सोनू पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार प्रस्तुति है, थैंक यू सो मच भाई। और हमारे हुकुमचंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं यानी कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राजू यादव जी लिखते हैं कि आदरणीय सम्मानित महोदय श्री आरजे अमन जी को सादर प्रणाम नमस्कार, कार्यक्रम हम भी सुन रहे हैं और आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते गिड़गिड़ाते रहिए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं।

0: ग्राम पंचायत ऊपर कहाँ ये श्रीरामपुर यानी के पुंडेरा सरीला राठ मुस्कुरा हमीरपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत वेलकम करते हैं राजू यादव जी, अपने इतना लंबा एड्रेस लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच बबीता जी। ओके जी, और बबीता जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: नमस्ते मनसर जी, नमस्ते। शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा गाना चला दिया, सारे दोस्तों को धन्यवाद, अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं
0: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और नंदलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि बबीता जी का डिमांड मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि बबीता बहन की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू। संध्या पटेल जी लिखते हैं वाह क्या लाइन है इस गाने का, सच में मजा आ गया सुन के। और अकुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे डिमांड है बबीता जी, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और रॉय पर्वत जी जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट इन किशनगंज बिहार से, और लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम में अच्छा शानदार चल रहा है। ओके, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ऐसे तो जमाने में बड़े लोग मिलेंगे, ये गाना मुझे अच्छा लगा। और इसी बात अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक हमारे अजय कुश जी हैं और अशोक पाल जी हैं, दोनों सुनना चाहते हैं तुम क्या मिले जाने जा प्यार जिंदगी से हो गया। बिल्कुल, जिंदगी से हो गया प्यार। और ये गाना मेरी सुंदरता की मुरत जी को डेडिकेटेड है।

बिल्कुल तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया है। जाकिर खान जी लिखते हैं कि सर जी वो आपका गाना इसलिए मैंने रिजेक्ट किया है, मैंने वहाँ पे बताया भी है उस गाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस गाने को मैं प्ले करूँगा तो वो गाना यानी किसी को सुनाई नहीं देगा, इसलिए दूसरा गाना भेज सकते हैं। और जुड़ चुके हैं हमसे ईशु भगत जी, बहुत बहुत वेलकम है, यानी किशनगंज बिहार से बहुत बहुत वेलकम है ईशु भगत जी। और बबीता जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम क्या मिले जाने जा प्यार दोस्ती से हो गया, मजा आ गया सुन के। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि तुम क्या मिले जाने जा प्यार जिंदगी से हो गया, मजा आ गया है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि ये निर्मल राय जी का वेलकम है रेडियो हॉटस्टार की दुनिया में, अच्छा बहुत बहुत वेलकम है जी। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि तुम क्या मिले जाने जा एक्सीलेंट सॉन्ग, सभी गाने आज के बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि तुम क्या मिले जाने जा, और हाँ इन्होंने एक नाइन भी लिखा है कि तुम मिले दिल खिले और जान बन गए, लिखते हैं कि तुम मिले और दिल खिले और जान बन गए और मुस्कुराए लव एक हुए एक दूजे की पहचान बन गए, वाह वाह क्या बात है क्या बात है। और गजानन सरकार जी लिखते हैं अजय कुछ जी और अशोक पाल जी के वचन मुझे बहुत पसंद है, इसी बात पर अगले जो डिमांड है वो बहुत से दोस्तों की है। और वो गाने में शामिल हो रहे हैं हमारे शेख मोहम्मद ताहिर जी और यानी मीना इब्राहिम जी और भी कोई है इसमें, तो सभी सभी गाने का मतलब इन सभी दोस्तों की पसंद के गाने में सुनवा रहा हूँ कि तुझे रब ने बनाया किस लिए बनाया कि तू अकेला ना रह जाए इसलिए। इंजॉय द ट्रैक मीना इब्राहिम जी एंड और बताया था ना एक नाम, हाँ यानी शेख मोहम्मद ताहिर जी मीना इब्राहिम जी। Enjoy the trip.

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और इसका जो अंदाज में वो कहती है ना आरजे आकांक्षा जी, वो बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज में। जो दीवाना मतलब उनका अंदाज ही निराला है भाई, मुझसे वो कहना ही नहीं आता है। रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, बहुत प्यार से बोलती है। थैंक यू आरजे आकांक्षा जी। और ये फीडबैक।
1: हेलो सर
0: जी,
1: ये जो आपने गाना सुनाया ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा।
1: और मैं यहाँ पे रेडियो सुनते सुनते ये गाना गुनगुना रही थी, लेकिन मैं भी ये गाना गाना चाहती हूँ।
0: अच्छा, सुना दीजिए।
1: जो कि काफी अच्छा है।

0: काबिल तो समझा,
1: क्या बात है,
0: तुम क्या मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया।
1: वाह क्या गाया आपने,
2: काफी खूबसूरत सॉन्ग था ये।
1: जी बिल्कुल,
2: और ये सॉन्ग भी प्रेम पुजारी के लिए ही था।
1: ओके, और यहाँ पे क्या कहें, आज के सभी गाने बहुत प्यारे प्यारे हैं। मतलब आज मुझे लग रहा है कि अगर आरजे आकांक्षा जी नहीं आएंगे तो मुझे प्रोग्राम को थोड़ा लंबा करना पड़ सकता है। हो सकता है रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि तुझे रब ने बनाया किस लिए गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और गोविंदा हमारे गजानन सरकार जी लिखते हैं कि ये मीना जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच मीना इब्राहिम जी। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि तुझे रब ने बनाया सुपर से ऊपर वाला गाना है, बहुत अच्छा लगा है। और गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ कुंता बहन जी लिखते हैं दिल्ली से के दोनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही शानदार, मजा आ गया सुन के। और अजय कुछ लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए, और सभी गाने बहुत प्यारे प्यारे चल रहे हैं। जाकिर खान जी लिखते हैं कि दूसरा गाना भेज दूंगा, जी भेज सकते हैं क्योंकि मैंने आपका गाना को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए तो भेज सकते हैं। और यहाँ पे ईशु भगत जी लिखते हैं कि रात खामोश थी सितारे कुछ कह रहे थे, रेडियो पर पुराने नगमे दिल में उतर रहे थे, और तेरी याद आई तो लगा जैसे कोई धीमी सी आवाज मुझे पुकार रही हो, और आसमान का हर सितारा तेरी कहानी सुनाने को तैयार हो, और कुछ मोहब्बतें और किताबों में नहीं मिलती, वो तो बस रात रेडियो और सितारों के बीच दिल में खिल जाती है। अच्छा ऐसा है। और यहाँ पे आत्माराम जी लिखते हैं कि ये तुझे रब ने बनाया किस लिए, वह गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट गाना है। शेख मोहम्मद ताहिर जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ शिल्पा यानी शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तुझे रब ने बनाया बहुत ही प्यारा गाना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो किन का है, जरा मुझे देखना पड़ेगा लिस्ट। ये चलिए सुनवाता हूँ, सुनीता गोप जी के पसंद, आंखों में नींदे ना दिल में करा, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। इंजॉय दैट ट्रैक।

0: सनम।
1: बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, मैं शामिल करता हूँ पहले फीडबैक यहाँ पे। आमना खान जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि मजा आ गया गाना सुन के, सच में मस्त मस्त सभी गाने हैं जी, आज के सभी गाने बहुत मस्त मस्त हैं, मुझे सभी पसंद है, अगला गाना भी बहुत पसंद है। अजय भगत जी लिखते हैं कि ये तेरी मुस्कान मेरी सबसे प्यारी खुशी है और तू पास रहे बस इतनी सी दिल की ही आरजू है। और एम डी असलम नाना जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलम, बहुत बहुत वेलकम है। और सभी दोस्तों को भी ये नतक सलाम कर रहे हैं। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। और साथ ही साथ रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: आरजू है कि वफा बन के तेरे साथ रहूं, आरजू है कि वफा बन के तेरे साथ रहूं, धड़कते दिन की सदा बन के तेरे साथ रहूं, मेरे होठों से जो छीन ना सके, मेरे होठों से जो कोई छीन ना सके, जिंदगी की वो दुआ बन के तेरे साथ रहूं, जिंदगी की वो दुआ बन के तेरे साथ रहूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी, मेरा गाना बजा दिए। और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, इतना अच्छा अच्छा फीडबैक दिए। और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी बिहार से आई, आज का प्रोग्राम बोले तो
1: झक्कास। ओके जी, धन्यवाद देते हैं काजल झक्कास जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और यहाँ पे जुड़ चुके हमसे नाम है इनका सत्यम भगत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, लिखते हैं कि चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, और निर्मल शुद्ध नमक खाइए, आपको आयोडीन की कमी है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, लगता है बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, यानी किशनगंज बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे अनिल मेहता जी का है, क्या है सुनते हैं।
3: हेलो आरजे अमन सर
1: जी, बोलिए।
3: मैं अनिल मेहता, सूरत गुजरात से। विवेक मुसरान की एक फिल्म है सनम, उसका एक गाना सुनना है। इश्क मेरे रब्बा, ये गाना सुनना है, डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर को, आरजे वंशिका को, आरजे परमार सर को, आरजे आकांक्षा जी को, इन सभी को गाना डेडिकेट रहेगा, साथ साथ ऑनलाइन सभी दोस्तों को। ओके थैंक यू,
1: एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। सच में इश्क में मेरे रब्बा, जाने क्या कर जाता और तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। और बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं मेरे पास, और प्रियंका जी क्या कहती हैं जरा सुनते हैं।
1: हेलो सर, आपकी सभी सॉन्ग ही बहुत ही बेस्ट हैं
0: जी।
1: समझ ही नहीं आ रहा कौन सा गाएं और कौन सा छोड़ दें। सभी बहुत ही अच्छे हैं।
0: हाँ।
1: जो कि ये भी बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं ये गाना भी गाना चाहती हूँ।
0: अच्छा बताइए।
1: हमें उसने मिलाया किस लिए,
0: किस लिए,
1: किस लिए? कभी भी छेड़े ना हम दोनों, कभी भी छेड़े ना हम दोनों, इसलिए इसलिए तुझे रब ने बनाया। किस लिए,

0: इसीलिए सभी सॉन्ग इतने अच्छे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा गाएं और कौन सा ना गाएं।
1: सभी गाइए, ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ पे सच में इस बार बहुत ज्यादा फीडबैक आए हुए, मैं क्या करूँ यार। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी, हम ईशु भगत जी का और सत्यम भगत जी, मतलब सभी मेरे भाई हैं। अच्छा, सभी का वेलकम करते हैं और सभी को मुझे लग रहा है कि आपने जोड़ा है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ये फीडबैक
2: अजय अमन शाह जी, अनिल मेहता जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
1: वेलकम जी आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ पे सुनीता गोपी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि इश्क में मेरे रब्बा लवली सॉन्ग है। हाँ, एक यहाँ पे लवली सिंह भी आए हुए थे, पता ना वो कहाँ गायब हो गए हैं। और सत्यम भगत जी लिखते हैं कि ये शायरी मेरी यानी के प्रेमिका के लिए है। लिखते हैं कि यानी के काली काली बालों से करती हो अंधेरा, यानी काली काली बालों से करती हो अंधेरा, जल्दी से आओ टकली कर दो सवेरा। अरे भाई, आपने तो मुझे हंसा दिया। गजानंद जी लिखते हैं कि अनिल मेहता जी को पसंद, मुझे बहुत पसंद है ये, थैंक यू सो मच। इश्क में मेरे रब्बा जाने में क्या कर जाता, और तुझसे प्यार ना करता तो शायद मैं मर जाता। अनिल मेहता लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। दोस्तों का भी थैंक यू सो मच फीडबैक देने वाले दोस्तों को। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि इश्क में मेरे रब्बा जाने में क्या कर जाता, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आंखों में नींदे ना दिल में करार और इश्क में मेरे रब्बा, दोनों गाने बहुत ही प्यारे लगे हैं। और दीपक कुमार ये गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में बहार आ गई हो और सब रेडियो चैनल सोए हुए हैं, यही एक चैनल ऐसा लगता है कि जिसमें जिंदा दिल जान है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच दीपक कुमार जी आपके इतने प्यारे फीडबैक के लिए। देव राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। देव राय जी लिखते हैं कि तेरी मुस्कान पर दिल हार बैठा, लिखते हैं कि तेरी मुस्कान पर दिल हार बैठा और तेरे प्यार में मोबाइल भी चार्ज करना भूल बैठा, अब तू आई लव यू बोल दे वरना बैटरी के साथ दिल भी बंद हो जाएगा। भाई क्या वो मुझे सुन रही है? अगर सुन रही है तो बताइए, मैं आपके यहाँ से मैं आपकी तरफ से बोल देता हूँ, ओके। और सरोजी शेट्टी जी लिखते हैं कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे यानी पूजा भास्कर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे ईशु भगत जी लिखते हैं कि यानी कि कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं और फिर भी भर आती हैं, दिल यानी कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जी बिल्कुल सही कहा। आरजी रत्ना जी जुड़ चुकी हैं बहुत दिन बाद, वेलकम है आपका। और क्या बात है, बहुत दिन बाद आई हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आवाज की मलिका आरजी रत्ना जी। और एसके जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ग्रेटर नोएडा हबीबपुर, अच्छा ग्रेटर नोएडा यानी कि वेस्ट यूपी से, ओके। और आमना खान जी लिखते हैं कि ये सारे सॉन्ग 90s में है। जी बिल्कुल, मतलब आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, मतलब किस गाने की मैं मतलब तारीफ करूँ यार, मेरे पास सभी गाने एक से बढ़कर एक आए हुए हैं, लेकिन अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, चलिए सरबजीत सेठी जी का प्ले करता हूँ, मोहब्बत इनाम करम देखते हैं। मेरा फेवरेट गाना में से एक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग।

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास, और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि तेरे प्यार का ऐसा असर हो गया, हंसते हंसते दिल भी तेरा दीवाना हो गया, अब लोग कहते हैं ये आशिक है या कॉमेडियन। और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमा सर जी, सरजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और इसी बात पर यहाँ पे बाबूलाल ने अनजान लिखते हैं कि भाई सरोजी सेठी जी का डिमांड मुझे बहुत प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और कुंता बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, फिल्म बाहर आने तक का। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि आज सभी गाने की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, सभी बढ़ एक से बढ़कर एक हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि सरोजी सेठी जी के पसंद मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं दोस्त, सरोजी सेठी जी की च्वाइस सुपर। और अमन सर जी, हमारा और सभी रेडियो हॉटस्टार के फेवरेट, यानी दोस्तों का भी ये फेवरेट गाना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और शिल्पा बहन लिखती है कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, सॉन्ग भी बहुत ही पसंद है मुझे, और ओह बहुत ही प्यारा गाना लगा है मुझे, धन्यवाद देते हैं उनको। और यहाँ ईशु भगत जी लिखते हैं कि हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा जिसकी कोई तस्वीर नहीं, और दर्द से रिश्ता है मेरा, इन खुशियों मुझे नसीब नहीं, और मुझे भी कोई याद करे इतना मैं खुश नसीब नहीं। अरे भाई बहुत लोग याद करने वाले हैं, टेंशन मत दीजिए। रूपचंद गोयल जी जुड़ चुके हैं फीडबैक के साथ, वेलकम है, क्या कहते हैं।

0: खिलते हैं। अमन सर जी लाजवाब सॉन्ग, दिल खुश हो गया। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपका। भी नागेश्वर धाकर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि खंडहरों के भी दीवाने बहुत हैं साहेब, और पुराने महल देखने दुनिया यूं ही नहीं जाया करती है। गुड इवनिंग जी, वेलकम है आपका भी। और विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि ये तो मेरा कॉलेज टाइम का गाना है जी, मजा आ गया सुन के गाने को। रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि ये चेहरे पर सादगी और दिल में लिखते हैं कि चेहरे पर सादगी और दिल में सुकून का साया है। अमर नाम ही ऐसा है जिसने हर रिश्ते को प्यार से सजाया है। आपकी मौजूदगी ने हर लम्हे को बेहद खास बनाया है। थैंक यू सो मच रॉय पर्वत जी। और देवराय जी लिखते हैं कि ये तेरी याद में चाय पी गए लिखते हैं कि तेरी याद में चाय पे चाय पी गए, जब बिल आया तो इश्क में इश्क भी उतर गया। अच्छा, और यहाँ पे सत्यम भगत जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, मैं कोशिश करूंगा इस गाने के लिए। वो ऐसी भी इस गाने की डिमांड आई हुई है मेरे पास, लेकिन अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ अजय भगत जी का, सॉरी अजय भगत जी कर रहे हैं, अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी, इंजॉय।

0: और यहाँ पे एक मैसेज हुआ है आरती तिवारी जी का, लिखते हैं कि यानी किसी का हर रोज इंतजार करो तो जाने, और किसी के लिए नींद अपनी हराम करो तो जाने। और यूं तो लोग यानी कह देते हैं कि वादों के पक्के हैं, और कभी अपना वादा निभाओ तो जाने। ओके, इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूं, लेकिन फीडबैक भी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे पहले सुनते हैं सर्वेश भगत जी का।
1: अरजय अमन सर जी, अभिषेक तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी वेलकम है आपका भी। और संदीप पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, आज के सभी गाने बहुत प्यारे प्यारे हैं। एस खानम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग चल रहा है, अगला भी सुनने को मिलेगा, वो भी प्यारा है। रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, और सभी दोस्तों को भी गुड इवनिंग कह रही हैं। सर्वजीत सेठी जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अमन सर जी
0: जी जी,
2: सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार ऑफ द वीक में लता मंगेशकर जी और मुकेश जी को लाया जाए, तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट स्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: ओके जी, अरे यहाँ पे कोई गोविंदा जी को बुला रहा है, कोई मुकेश जी को, कोई लता जी को, अरे सब कोई धीरे धीरे आते रहेगा, टेंशन मत लीजिए, एक दिन सभी को नहीं लाया जा सकता है ना। और ईश्वर भगत जी लिखते हैं कि इश्क ना करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, लिखते हैं कि इश्क ना करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, और आगे नहीं बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। अच्छा भाई मत बताइए। और यहाँ पे ओके आप यानी कि भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि तुम्हारे प्यार का जेस्टी इतना निकला, दिल भी गया और चैन भी गया। बिल्कुल। और यानी कि प्रियंका जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: सर
0: जी,
3: आज सभी गाने इतने अच्छे हैं,
0: हाँ,
3: कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं तो इंडियन आइडल में पहुंच गई।
0: अच्छा,
3: पर ये गाना तो मैं सुनाऊंगी।
0: अच्छा,
3: क्योंकि सुनाने में जो मजा है वो लिखने में कहाँ।
0: हाँ, बिल्कुल।

0: बात है, क्या बात है, अच्छा गाती है।
1: अगर देखना है तो जी भर के देखो, कभी फिर ना कहना कि कम देखते हैं, देखते हैं। सर आज के सॉन्ग इतने अच्छे हैं, इंडियन आइडल ही चल रहा है मेरे लिए तो।
0: अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि अमन सर जी, अभिषेक तिवारी जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, लाजवाब लगा, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं वाओ क्या सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के, ऑसम चॉइस है। और सत्यम भगत जी लिखते हैं कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वह है जो पानी में गिरा हुआ अच्छा यानी सांस भी पहचान लेती है। मतलब आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन सर जी, हमारे ईश्वर भगत जी, देव यानी देव यानी पर्वत जी, और आय सत्यम भगत, मतलब सभी मेरे भाई अच्छा ओके, तो आप सभी का वेलकम करते हैं आपकी तरफ से। और ये ईश्वर भगत जी लिखते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो मेरे दोस्तों के पास नहीं उसे दिमाग कहते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अकेले गाना सुनने में कोई मजा नहीं, और सबके साथ गाना सुनने का मजा ही तो मजा है। आपका चैनल सुनकर ऐसा लगा है कि जैसे अब बहुत मजा आ रहा है, आनंद ले रहा हूँ जी, आनंद देते रहिए और अगला गाना भी सुनते रहिए, जिसे लेकर आई हैं यानी कि कायनात जी, बहुत ही इनकी आवाज़ प्यारी है और गाना भी बहुत प्यारा है, इंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे। देवराज जी लिखते हैं कि दिल दिया था संभालने में और उसने पासवर्ड ही बदल दिया। भाई तुसी बड़ी मजाकिया हो यार। और यहाँ पे संदीप पटेल जी लिखते हैं कि सुपर हिट चॉइस है। थैंक यू इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाने के लिए सभी दोस्तों का। और अभिषेक तिवारी जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये छोटी छोटी आंखों वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाओ ब्यूटीफुल चॉइस है। और गजानन जी लिखते हैं कि कैनाज जी के पसंद मोहब्बतें फिल्म का बहुत शानदार लगा, मजा आ गया सुन के। और कुंता बेनी लिखती है कि मोहब्बतें फिल्म का ये गाना लाजवाब लगा है, थैंक यू सो मच। और यानी कि जुड़ चुके हैं नाम है यानी पीयूष कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं पीयूष कुमार मिश्रा जी। और देवराज जी लिखते हैं कि हाँ भाई ये मैंने आपका मैसेज पढ़ दिया ऑलरेडी, लेकिन अगला नोट डिमांड है यानी कुंता बेनी जी का है और सुनना चाहती हैं बालो यानी कि काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल में। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। बहुत सारे फीडबैक आए हैं, बहुत सारे फीडबैक आए हैं। माय गॉड, यहाँ पे ईशु भगत जी लिखते हैं कि नींद भी क्या गजब की चीज है, और ना आए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो पुराने सब कुछ याद दिला देती है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा भी है क्या। और यहाँ पे रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि हम भी निकले थे मोहब्बत की तलाश में और सर्दी बहुत थी, वापस आ गए। अच्छा। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड निकुंता बेनर्जी जी के च्वाइस ऑसम, थैंक यू सो मच डेडिकेट करने के लिए। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि ये निकाली तेरी चोटी है पुराना तेरा लादमी, बहुत अच्छा लगा गाना सुनकर, मजा आ गया। गजनंद सुनकर जी लिखते हैं आदरणीय कुंता बेनर्जी जी के पसंद, काली तेरी चोटी है पुराना तेरा लादमी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने की डिमांड करने के लिए। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि कुंता बेनर्जी जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है। और ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, कुंता बेनर्जी जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी,
0: वेलकम है आपका जी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि काली तेरी चोटी है पुराना वाला गाना इनको बहुत अच्छा लगा है। और कुंता बेनर्जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि अमन सर जी कुंता बेनर्जी के पसंद मुझे सुपर सुपर सुपर हिट लगी है। और कपूर चंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। देवराज जी लिखते हैं कि तेरे प्यार में इतने दुबले हो गए कि मम्मी बोली बेटा बीमार हो क्या, मैं बोला नहीं रिचार्ज खत्म हो गया है, अब मैं भी रिचार्ज होना चाहता हूँ यार, मैं क्या करूँ। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रमदापुरम शिवनी मालवा मध्य प्रदेश से हूँ, और लिखते हैं कि एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, मैंने उसका आपका चैनल को सुना दिया, वो सुसाइड करना भूल गया और अब आपका चैनल सुन रहा है और जिंदा दिल्ली से जी रहा है। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, आपने उसको रास्ता दिखा दिया। रवि मार जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग लगा है काली तेरी चोटी है पुराना, इसी बात बंगला जो डिमांड है असलम राणा जी का, असलम राणा जी क्या डिमांड है, सुनते हैं, इंजॉय द डे।

0: वेलकम बैक रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हो, सच में इनका गाना तो हमेशा कुछ हटकर ही होता है। और हमारे साथ हमें सुन रहे हैं जाकिर मुलानी जी, जो आज का ये स्टार ऑफ द वीक के मेहमान लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू भी कहना चाहता हूँ इतने हमेशा अच्छे अच्छे यानी कि कलाकार को लाने के लिए। और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हैं। एस के जसवाल जी लिखते हैं कि वाह क्या आवाज़ है, क्या गाना है, सुनकर मज़ा आ गया, ये गाना मुझे बेस्ट लगा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ओके और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि तेरे पीछे इतना भागा कि जूते घिस गए और अब मोहल्ले वाले कहते हैं ये लव का बेरोजगार है। भाई इतना मत भागा कीजिए ना। ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और साथ ही साथ ये प्रियंका जी क्या कहती हैं, जरा सुन लेते हैं।
2: हेलो अमन जी, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है।
0: अच्छा,
2: और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं जो कि सुनने को मिलते हैं, मुझे सुनाने को मिलते हैं, इसलिए मैं ये सॉन्ग गाऊंगी।
0: ओके ओके।
2: मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, ना तू मेरा माही है ना मेरा है पड़ोसी, कोई जो मलाई से कलाई थाम लेगा।
0: अच्छा।
2: क्या होते हैं माही तुझे पता तब चलेगा, जाऊंगी तभी जब माही डोला लाएगा।
0: अच्छा।
2: तेरे जैसा हाथ मलता ही रह जाएगा, सजना के साथ मैं तो जाऊंगी, निकल होगी तेरी मुश्किल।
0: ओह माय गॉड,
2: सभी सॉन्ग बहुत ही प्यारे हैं और गाने को मिल रहे हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: ओके, वेलकम है आपका भी। और इसी बात पर यहाँ पे इशू भगत जी लिखते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो मेरे दोस्तों के पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। जी एक बार इसको आपने इनके कह दिया है, दोबारा मत कहिए, एक ही चीज़ को दोबारा बार बार मत कहिए। गजानन जी लिखते हैं गादड़ी असलम राणा जी के पसंद, मुझे शानदार लगे, धन्यवाद देते हैं उनको। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि रेशमी बालों वाली गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब बेहतरीन डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि काली तेरी चोटी है ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा गाना लगा, वेरी नाइस सॉन्ग है। और कुंता बेन जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ अजय भगत जी लिखते हैं कि तेरी यादों में रात भर जागा, लिखते हैं कि तेरी यादों में रात भर जागा और सुबह यानी बॉस ने ऑफिस में पकड़ा, अब लव स्टोरी नहीं यानी सैलरी स्टोरी चल रही है। ओके, कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ शाहिद अंसारी जी का, और शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल सॉरी सॉरी, गलती हो गई। और जाकिर मुरानी जी, मुझसे भी गलती हो ही गई है, आप समझ रहे हैं ना। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती। और सब जानते हैं मैं नशा नहीं करता, सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, मगर मैं पी लेता अगर तू शराब होती। ओके जी, और संजय पटेल जी लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है। और हमारे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझे, बाबा माफ करो, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। ये फीडबैक
1: अरजे अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं,
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और यहाँ पे बाबूलाल जान लिखते हैं कि शाहिद जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एस खानम जी लिखते हैं कि ये क्या लाइन है, मोहब्बत हमारे, अच्छा ये लिखते हैं कि मोहब्बत हमने मांगी, मोहब्बत हमने मांगी और मेहरबानी नहीं मांगी। जी बिल्कुल, इस गाने की लाइन बहुत ही प्यारा है कि मोहब्बत हमने मांगी, मेहरबानी नहीं मांगी। वेरी नाइस सॉन्ग है, दिल को छू गया ये गाना। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग शाहिद अंसारी जी। और अकुंता बेनी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस डिमांड के लिए शाहिद जी को थैंक यू सो मच। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझको, बाबा माफ करो, गाना अच्छा लगा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है जाकिर खान जी का है, दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। इंजॉय द ट्रैक।

0: फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए मेरे पास। और यहाँ पे सर्विस भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि इश्क में नहीं नींद में बदनाम है, और सुबह 12 बजे उठना ही हमारी पहचान है भाई। 12 बजे यानी सुबह नहीं होती, 12 बजे दोपहर होता है। और अब यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाकिर खान जी की पसंद सुपर सुपर सुपर हिट लगी है। एंड यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि दीवानी दीवाना तेरा हो गया, बहुत ही प्यारा गाना है। और गजानंद जी लिखते हैं कि दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया लता मंगेशकर। और शायद एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में लाजवाब गाना सुनने को मिला है, और मजा आ गया सुन के इस गाने को। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि जब से मिली तू ये गाना मुझे अच्छा लगा। और कुंता भी नहीं लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है जाकिर खान जी की पसंद, थैंक यू सो मच। इसी बात मतलब जो डिमांड है मेरे पास और ये है यानी शिल्पा बेन जी का। शिल्पा बेन जी, एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल इंतजार इंतजार इंतजार इंतजार की घड़ी खत्म हो गई शिल्पा बहन जी, आपकी डिमांड पूरी हो गई है। और सुनील कुमार जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया, जब से तू दिल में समाई, जब से तू दिल में समाई। ये अमन भैया बहुत ही लाजवाब सॉन्ग, ये फिल्म फर्स्ट लव लेटर का गाना, बहुत ही लाजवाब। दिल से धन्यवाद है फरमाइशकर्ता को। मैं सुनील कुमार बाका बिहार,
0: धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे यानी कि सूरज भगत जी जुड़ चुके हैं, यहाँ लिखते हैं कि इतना सताना जरूरी था क्या, अब मोहब्बत का बहाना बनाना जरूरी था क्या, आंखों में हमारी अश्क देखकर और तुम्हारा मुस्कुराना जरूरी था क्या, और छोड़कर जाना था चुपचाप तो चले जाते यार, यूं दिल दुखाना जरूरी था क्या, मोहब्बत ना सही दोस्ती रख लेते और रिश्ता मिटाना जरूरी था क्या, अब तेरे चुप रहने से मेरी जान बच जाती है और तुम किसी और के हो ये बताना जरूरी था क्या। क्या बात है भाई, अच्छा लिखा है आपने। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सभी और सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच। और आमना खान जी लिखते हैं वाओ मेरा फेवरेट गाना सुनने को मिल गया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जागीर खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। शिल्पा बहन लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा डिमांड को प्ले करने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ रहा हूँ और सुन गया जी, वेलकम है आपका भी। और प्रियंका जी लिखते हैं कि माधुरी दीक्षित माई फेवरेट, आई लव दिस सॉन्ग, ओके जी हमको है इंतजार, बहुत ही प्यारा डांस किया है उन्होंने जी, मुझे पता है। और गजानंद जी लिखते हैं कि शिल्पा बहन जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और क्या नाम है इनका, निर्मल रॉय जी लिखते हैं कि हजारों महफिल हैं लाखों मेले हैं पर जहाँ तुम नहीं वहाँ हम अकेले हैं, माई डियर स्वीट वाइफ मेरी जानू मिस यू। अच्छा, और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि तुमसे मिलना मेरी मर्जी थी लेकिन तुम पर ठहर जाना मेरी किस्मत, सुपर सॉन्ग मजा आ गया है। और बाबूलाल अंजान लिखते हैं कि यहाँ पे शिल्पा जी का डिमांड शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि शिल्पा बेन जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और शाहिद जी लिख देंगे थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और शिल्पा बेन जी लिख देंगे थैंक यू अमन जी मेरा इंतजार तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया था मेरे हम सफर के रूप में जी, वो तो मुझे पता है लेकिन मैं तो गाने की बात कर रहा था ना, गाने का इंतजार खत्म हो गया जब से आप इंतजार करी थी गाने की रिक्वेस्ट के लिए। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों का, एक हमारे राजेश यानी कि मतलब राजेश कुमार जी गेटर नोएडा वाले हैं और एक अभी अभी डिमांड आई है, शायद उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो प्लीज अपना नाम जरूर बताइए ताकि मैं आपका भी नाम ले लूँ, वैसे आपके भी इसी गाने की डिमांड है। थैंक यू सो मच।

वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आया है और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं। और देवराज जी लिखते हैं कि निर्मल जी मेरे सर हैं, उनको नमस्ते करता हूँ, आई लव यू इन गुरु जी। अच्छा जी, तो आपके सर जी को मेरा भी प्रणाम है और अगला गाना उन्हीं का आने वाला भी है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। और गोविंदा सॉरी हमारे गजानन सरकार जी लिखते हैं कि राजेश कुमार जी के पसंद, मेरे प्रीतम मेरे बालम, अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। एस प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। एस प्रसाद जी लिखते हैं कि सर मैं धर्मपुर से संजय प्रसाद, और मेरे लिए जी तो आप वहाँ पे गाना भेज दीजिए, यानी कि सॉन्ग रिक्वेस्ट है, और आज के थीम पर होना चाहिए तभी गाना प्ले हो पाएगा। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत अच्छी लगी, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: बहुत बहुत लाजवाब गाना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: ओके नंदलाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी निर्मल राय जी का है, और गुरु जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को, बहुत प्यारा।

वेलकम बैक। और सच में भाई रुलाइएगा का अगला गाना आर के रवि जी का भी है, उनका भी गाना प्ले करने वाला हूँ, लेकिन फीडबैक तो बहुत सारे आए हुए हैं। चलिए आर के रवि जी के बाद मैं फीडबैक लेता हूँ। ओह माय गॉड क्या करूँ, चलिए फीडबैक पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इसके जसवाल जी लिखते हैं कि राजेश जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं। और देवराय जी लिखते हैं कि ये तेरी याद में इतना रोए कि मम्मी बोली नल बंद कर पानी का बिल है। और ईशु भगत जी लिखते हैं कि लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर और दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, और जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आंखों में वो निकल जाते हैं आंखों का पानी बनकर। अच्छा, और गजानंद जी लिखते हैं निर्मल जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा है। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि पहला प्यार का पहला गम सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है। और अकुंता बेन जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग एंड ये फीडबैक, सुन लेते हैं।

0: मत रुई।
1: ये मेरा फेवरेट गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। मूवी का नाम तो ऐसे याद नहीं है, लेकिन जिनका भी
0: पापा कहते हैं फिल्म का नाम है जी, बिल्कुल। और सर्वजीत शेट्टी लिख देंगे, कार्यक्रम तो जबरदस्त चला है, थैंक यू सो मच। और प्रियंका जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: हेलो सर,
0: यस,
2: ये सॉन्ग मैं भी सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए।
2: पहले

0: थैंक यू, बहुत सुंदर
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात पर यहाँ पे काजल झकाजी लिखते हैं कि गाना बहुत अच्छा लग रहा है, और जी बहुत ही अच्छा लगा है गाना। और यहाँ पर रवि मर्जी लिखते हैं कि पहला प्यार का पहला गम बहुत सुपर लाजवाब सॉन्ग है। और यहाँ एस खानम जी लिखते हैं कि वाओ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग इन पहले प्यार का पहला गम, आई लाइक दिस सॉन्ग। जी बिल्कुल। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि इन्हें प्यार किया बदनाम हो गए और चर्चे हमारे सरेआम हो गए, जालिम ने दिल उस वक्त थोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए। ओह माय गॉड। इसी बात पर अगला जो डिमांड है आर के रवि जी का, क्या सुनना चाहते हैं तेरी याद आती है। एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल, ये भी गाना बहुत ही प्यारा था और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आमना खान जी लिखते हैं कि अच्छा ओके ओके, थैंक यू सो मच, मैं जरूर कोशिश करूंगा। और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि हम भी बड़े आशिक निकले यारो। और अच्छा जी, और यहाँ पे सरबजीत सरजीत लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिमांड है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आर के रवि जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और ये

0: थैंक्स अच्छा सा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: बिल्कुल, और यहाँ पे इस खानम जी लिखते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि तेरी याद आती है सुपर सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे रॉय पर्वत जी का है, और ये सुनना चाहते हैं हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।

0: बिल्कुल हम जैसा, कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं मेरे पास। यहाँ पे आरती तिवारी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: हाय क्या करूं होठों पर फरियाद आती है।
0: अच्छा।
1: हाय

0: आज का गाना अभी से, मतलब शुरू आया गाना पूछिए मत, कितना अच्छा सा, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
1: जी, अगला गाना भी सुनिए, अच्छा लगेगा।
0: आंसर ये जितने लोग मुझे उनको
1: जी जी धन्यवाद है आपका भी। और यहाँ पे देवराज जी लिखते हैं कि आर के रवि जी और ये बोलबम गए हुए हैं अमन सर जी, और एक बार अच्छा ओके ठीक है, ये लिखते हैं जय महाकाल ओके जी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या नाम है इनका, यानी कि कुमार चंदन जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका कुमार चंदन जी। और कुंता बेनी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि हम जैसा कहीं आपको दिलवर ना मिलेगा, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। शिल्पा बेन लिखते हैं कि हम जैसा कहीं आपको दिलवर ना मिलेगा, ऑसम, बहुत ही ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी यानी प्रियंका जी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और वो बहुत अच्छा गुनगुना रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि हम जैसा कहीं आपको दिल भरना मिला, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पर रॉय पर्वत जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो सिया जी का है, और सिया जी सुनना चाहती हैं ए दिल इतना बता, इतना बता, कितना बता। इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल, कैसे पता चलेगा भाई कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, क्योंकि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। ओह नहीं नहीं, मैं तो मतलब इनके गलत कह रहा हूँ कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। ये फीडबैक सुनते हैं।

0: था।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी। और ये देवराज जी क्या कहते, सुनते हैं।
2: लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो,
1: ये कहाँ से आ गया।
2: शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो।
1: अच्छा।
2: अमन जी ये गाना एक बार प्ले कर दीजिए।
1: नहीं प्ले हो सकता क्योंकि ये आज के थीम पे नहीं है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगर थीम पे होता तो जरूर प्ले करता। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी अच्छा देखता हूँ आपका भी कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ है अभी तक। रणबीर सिंह जी लिखते हैं कि मुरादाबाद यूपी वाले। दिल इतना बता।

है पता ही नहीं चलता है, असली प्यार की यही पहचान है। और यह है यानी शिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं सो ब्यूटीफुल चॉइस है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो बिंदिया जी की है, और बहुत दिन बाद आई है बिंदिया जी अपनी डिमांड लेकर। इंजॉय द ट्रैक।

0: अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: जी वेलकम है, और जल्दी आप लोगों का गाना भी आने वाला है, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। और गजल अंजलि लेते हैं कि उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में शानदार गाना सुनने को मिला। बिंदिया जी को थैंक यू सो मच। और आमना खान लिखती है कि सुपर सॉन्ग है, बहुत प्यारा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं कि अमन जी मैं बहुत लेट लतीफ जुड़ा हूँ, मैं कहीं रफू चक्कर हो गया था, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और रेडियो हॉट एटा सुनने वाले सभी दोस्तों को भी प्यार भरा नमस्कार है, मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम करते हैं आपका भी। और आत्माराम जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। और रणवीर जी लिखते हैं कि जेठालाल जी के ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल डिमांड के लिए थैंक यू बिंदिया जी। और रॉय परबत जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है। और देव राय जी लिखते हैं कि हम भी बड़े आशिक निकले यारो, और भाई कहा हम समझ गए खेल। जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बिंदिया जी की चॉइस बहुत लाजवाब बेहतरीन लगी है। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि थोड़े समय के लिए हम नहीं जुड़े, क्या मेरा सॉन्ग निकल गया है? जी जी आपका सॉन्ग शायद निकल गया है। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। और गजानंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का प्रोग्राम नंबर वन लगा, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मुझे नहीं, जाकिर मुलानी जी को दीजिए, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कलाकार लाए हैं। इसीलिए इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे क्या नाम है, यानी कि प्रमोद कुमार जी का है। और प्रमोद कुमार जी हमेशा कुछ अलग गाने लेके आते हैं, तो इंजॉय द ट्रैक भाई प्रमोद जी।

0: बिल्कुल सनम, तुम हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो और गाना बहुत प्यारा लगा है, थैंक यू सो मच। और फीडबैक भी बहुत सारा है, संजय पटेल जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग है जी बिल्कुल। और फीडबैक
1: अर्जय अमान सर जी, बिंदिया जी।

0: और सच में आज मुझे इससे गलतियाँ हो जा रही हैं, मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। सॉरी। और भाई जी बिल्कुल आदित्य पंतोली जी का गाना प्ले हो गया है, मीना कुमारी जी आपका, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए।
0: नहीं, ये प्रमोद जी का नहीं था, यह हमारे नंदलाल जी का था। आई एम सॉरी, मैंने सॉरी बोला था ना, प्लीज इसका ख्याल रखें। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त हमारे यानी कि नंदलाल जी के पसंद बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं उनको। और रणवीर जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और नंदलाल जी क्या कहते, सुन लेते हैं।
2: अमन सर जी, मेरा भी फरमाइश यही गाना था
0: जी। ये आप ही का गाना है, मुझसे गलती हो गई है।
2: आप भूल गए
0: जी, ये आप ही की पसंद का गाना था। आई एम सॉरी। मैंने जब लिस्ट देखा फिर से गलती से मुझे गलती अनजाने में गलती हो गई थी। कोई बात नहीं है, और अब तो गलती हो गई है। और फिलहाल और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड ये गाना अच्छा लगा मुझे। और अकुंता बिने जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं नंदलाल यादव जी को। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की डिमांड मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि दीदार यार की तमन्ना है, लिखते हैं कि दीदार यार की तमन्ना है। और भाई मुझे कॉल ना करें प्लीज। ये लिखते हैं कि दीदार यार की तमन्ना है, और दिलों में कोई उनसे कह दे, और तस्वीर नहीं अब रूबरू मिलना हमें, और तो इश्क होता है तो होने दीजिए जनाब। ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला दो दोस्तों का है, एक है हमारे बाबूलाल अंजाना जी और साथ ही साथ उनके साथ हैं यानी सत्यम भगत जी, दोनों की डिमांड है दिल दीवाने का डोला, दिलदार के लिए। इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक। फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे हैं और यहाँ इशू भगत जी लिखते हैं कि आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी फिर वही यानी कि वही मतलब खकड़ाती हुई ये निकाली रात होगी और इसमें ना कर तू जो मेरा दिल दुखाया जा मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। रणवीर जी लिखते हैं कि ये दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए अच्छा लगा, गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं दोस्त बाबूलाल अंजाना जी और सत्यम भगत जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं कि सुनो लोगों को तो सिर्फ अल्फाज पढ़ना आता है और एहसास का तो कोई आशिक ही समझ पाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कुमार चंदन जी लिखते हैं कि जतन चाहे कर लो अच्छा कोशिश करेंगे। अजय भगत जी लिखते हैं कि सत्यम भगत जी की पसंद मुझे बहुत झकास लगी, थैंक यू। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि हम दोनों का दोस्तों की डिमांड पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ अपने दोस्त यानी कि प्रमोद जी का। प्रमोद जी इंजॉय द ट्रैक।

0: ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और मीना जी लिखते हैं कि प्रेम सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं, ये सिर्फ उन्हें पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि भाई प्रमोद जी का डिमांड मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और कुंता भी नहीं लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड, थैंक यू सो मच प्रमोद जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त प्रमोद जी की पसंद बेहतरीन, लाजवाब, सुनकर मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी हमारी फरमाइश को पूरी करने के लिए। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि ये गाना मैंने यानी पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये किन की जी डिमांड है, जरा सा MD फैज आलम जी की है। MD फैज आलम जी, इन्जॉय द ट्रैक।

बिल्कुल, मैंने चांद सितारों से सुना है सनम, और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एमडी फैज जी की चॉइस बहुत अच्छी लगी है, और यहाँ पे कुंता बनी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच एमडी फैज आलम जी, और मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, आज की सभी की सॉन्ग बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, थैंक यू सो मच, और अब राधा कृष्ण गोपाल जी लिखते हैं इसी यानी प्यारे गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर यानी यहाँ पे सोनू पटेल जी सुनना चाहते हैं, दिल को बेवजह धड़कने की आदत सी हो जाती है, तो सोनू पटेल जी गाजीपुर से एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक। बिल्कुल दिल को धड़कने की आदत हो जाती है। और कुमार चंदन जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा यानी लग रहा है गाना सुनना और आपका प्रोग्राम सुनकर तो यानी कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। जी बिल्कुल, इंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए। नंदलाल जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: सोनू पटेल जी का गाना बहुत लाजवाब लगा, बहुत बहुत बेस्ट गाना तहकीकात मूवी से।
0: जी बिल्कुल,
1: पसंद करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे रणवीर सिंह जी जेठालाल लिखते हैं कि दिल को धड़कने की आदत हो जाती है, गाना अच्छा लगा मुझे। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे संजय पटेल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और राधाकृष्ण को भी बेहतरीन डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी बात अगला जो डिमांड है, जैसे कि मैंने कहा कि अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी आज शामिल हैं, सुनवाते हैं।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार ऑफ द वीक, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है मोहब्बते और गाने का बोल है पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर।
0: अच्छा।
2: ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
3: आरजे अमन सर जी, सुचंदया, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
3: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है मोहब्बते और गाने का बोल है पैरों में बंधन है।
0: अच्छा।
3: पायल ने मचाया शोर। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत अग्रजन दहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, सूर्य भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सोनी कुमार, मिनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे आकांक्षा जी और आर जे रत्ना जी, आर जे एम एस परमार जी और आर जे वंशिका जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिए। जयराम जी की।
0: और इसी में आत्माराम जी।
4: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: मैं आत्माराम पाटिल ग्राम लिखा। तो सर आज तारक जिसने मैंने आज एक मूवी लाई है सर, मूवी का नाम है मोहब्बते और म्यूजिक है जतिन ललित जी का और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन है तो
0: बोले बोले बोले
4: पायल को बजाया है, पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शो। तो यह गाना सुना दो सबसे पहले अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद यूनुस जी है और आपके साथ साथ सुंदरता की मूर्त और आपको सभी सुनने वालों को आज का गीत समर्पित है सर।
0: एंजॉय कीजिए
4: आत्माराम पाटिल।

0: बिल्कुल पैरों में बंधन है। और देखो आया है जो मीना जी लिखते हैं कि मानसिक दूर बहुत दूर हो तुम हमसे और पर तुम्हारे जितना दिल के करीब और कोई नहीं। वाह क्या बात है, क्या लाइन कही आपने सच में। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट गाना है। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं,
1: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: धन्यवाद देते हैं अशोक देशमुख जी आपका भी। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना पैरों में बंधन है, बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और कुंता बेनी लिखते हैं कि मिलजुली डिमांड बहुत ही शानदार लाजवाब, और सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी धन्यवाद देते हैं। और जुड़ चुके हैं हमसे सुरेंद्र पाल यानी भोला जी, ये है यानी कि कोटक पूरा पंजाब से बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नाइस सॉन्ग है। और कुमार चंदन जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा ये गाना, और मेरे तो स्कूल की लड़कियां अंताक्षरी में यही गाना यानी कि यही गाना गाती थी। अच्छा स्कूल की भी आपको याद आ गई है। नंदलाल जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: सर्वेश भगत के ग्रुप का गाना बहुत लाजवाब लगा, सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छा लगा, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल यादव।
0: ओके जी धन्यवाद देते हैं आपको। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सभी दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और कई जन जी लिखते आदरणीय अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी और सर्वेश भगत जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ एस के जायसवाल जी का है, और एस के जायसवाल जी क्या सुनना चाहते हैं, इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास है। रवि मार जी लिखते हैं कि सर्वेश बगल जैसे उदस मुझे सभी गुरु फरमाइश अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: जय अमान सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, हम और अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे संजय पटेल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग सुनकर मजा आ गया है, और हमारे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि इसके जायसवाल जी की भी पसंद बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और देवराय जी लिखते हैं कि डॉक्टर आपको आराम की जरूरत है, मरीज जी और ऑफिस को भी यही बता दीजिए, तब तो पॉसिबल नहीं है। और मीना जी लिखते कि हमें मोहम्मद अजीज की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और राधा कृष्ण को भी इतने धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा डिमांड के लिए। इसी बात पर जो डिमांड है आमना खान जी का है, आमना खान जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा नगमा, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ हम अनिल क्या नाम है इनका, ये सुनील कुमार बांका बिहार जी का, इनका प्ले करता हूँ फिर आता हूँ तो फीडबैक शामिल करता हूँ।

वेलकम बैक। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते लवली सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और आज मैं आप सबके साथ हूँ 10:30 बजे तक, टेंशन न लीजिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड है। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और राधाकृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट गाना है। और देवराय जी लिखते हैं कि ये मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो सुदामा को भी मित्र बना लेते हैं और एक वो जो मित्र को भी सुदामा बना देते हैं। अच्छा, राजेश कुमार लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, सुपर सॉन्ग है, धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। जेठालाल जी, अगला जो डिमांड है मैं इन्हें प्ले करने वाला हूँ। और ये सुनना चाहते हैं भाई संदीप सुतार जी। संदीप सुतार जी क्या सुनना चाहते हैं जरा मैं बताता हूँ। संदीप सुतार जी का गाना की टूट गई। ओके भाई, मतलब क्या टूट गई, इंजॉय कीजिए, सुनते हैं।

वेलकम बैक। और अभी मर्जी लिखते हैं जो आप गाना अच्छा भी चल रहा है, बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में। और मनोज कुमार लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, बहुत बहुत वेलकम है मनोज जी। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना लगा। इसी बात अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो दिनेश चौहान जी का प्ले करने वाला हूँ। और ये सुनना चाहते हैं कि हम अपनी मोहब्बत का इम्तहान देंगे। जी इम्तहान दीजिए।

बिल्कुल, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूंगा। और संजय पटेल जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं मितवा भूल न जाना, शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण गुप्त लिखते हैं बहुत ही प्यारा नगमा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गाने के लिए भी रणवीर सिंह जी लिखते हैं जेठालाल जी के मितवा भूल न जाना, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और संदीप सुता जी लिखते हैं आर्जी अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया, सिर्फ मुखड़ा सुनाया, देखिए मुखड़ा नहीं सुनाया था मैंने, उसमें थोड़ा सा ज्यादा गाना प्ले किया था। और नहीं देखिए मैं कभी किसी के फरमाइश को नजरअंदाज नहीं करता हूँ, बहुत से दोस्तों के तो गाने छूट जाते हैं, गाने प्ले नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या कहिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके आपके मतलब गाने को नज़रअंदाज करता हूँ, अगर नज़रअंदाज करना होता तो मैं आपके गाने को प्ले ही नहीं करता है ना। यार आपने क्या ही गल, देखिए आप लोग प्लीज नाराज ना हुआ कीजिए, मेरा मतलब वो मतलब नहीं है यार, क्या कहें, मैं मूड ऑफ कर दिया आपने मेरा। चलिए मैं प्रोग्राम को वाइंड अप कर देता हूँ अभी है, क्या कहूँ आप लोग के लिए, मैं यानी कुछ भी कर दूँ ना आप लोग मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैं सबको, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है, कोई कोई गाने ऐसे होते हैं जैसे कि आपके जो गाने हैं, मैंने उसको यानी प्ले किया, थोड़ा सा ही सही गाना प्ले किया, बहुत से दोस्तों के गाने शामिल नहीं हो पाते हैं, ऐसे बहुत से गाने अभी छूटने वाले हैं, क्योंकि सभी के गाने को शामिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं कितने गाने प्ले करूँगा, मैं 6 बजे से लगातार शो कर रहा हूँ अभी, यानी कि 10:11 हो चुके हैं, और आप समझ सकते हैं ना। अजय भगत जी लिखते हैं कि नहीं भूले नहीं है भाई, सभी के गाने को प्ले करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके गाने को मैं प्ले करते हुए जाऊंगा, क्योंकि आंखें नम हो गई भाई, इन्होंने आंखें नम कर दिया इतना गाना प्ले करने के बावजूद भी। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का, गाना अच्छा अच्छा भेजने के लिए। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि मितवा भूल ना जाना गाना बढ़िया लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अमना खान जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना है जी, बिल्कुल। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा ये गाना लगा है, धन्यवाद। और यानी कि मीना जी लिखते हैं कि वाओ क्या गाना, औसम गाना है। जागीर खान जी लिखते हैं कि मितवा भूल ना जाना बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, मेरा फेवरेट गाना है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी जब आप गाते हैं तो गाने में जान डाल देते हैं, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। इसी बात पर अजय भगत जी का गाना ही मैं प्ले करता हूँ, क्योंकि हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, इंजॉय।

पे मीना कुमारी जी लिखते हैं कि धरती तक सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कि धरती जब तक रहेगी अंबर जब तक रहेगा और तब तक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनने को मिला। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। और आपने बड़ी इस गाने को शिद्दत से गाया है और वाह क्या गाया आपने, माशाल्लाह।

0: कोई भूला।
1: बिल्कुल याद आ गया है। और अजय भगत जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और रणवीर जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि आंख नम और दिल मुस्कुराया सॉन्ग मेरा फेवरेट है, थैंक यू सो मच। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि ये तो इमोशनल सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और निकला जी जुड़ चुके हैं डेनमार्क से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये फिर से
2: अमन भैया नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आपके इस जज्बे को मैं कोटि कोटि सलाम करता हूं, क्योंकि आप लगातार 4 घंटे और माने इतना बोलना जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और गले के लिए भी, लेकिन फिर भी आप सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी खुशियों पे का कौन ध्यान रख रहा है। और जो भी लिसनर ऐसी बातें करता है तो ये सबके लिए बड़ा दुखदाई है, इसलिए आप जो है इस बात को इग्नोर करते हुए और अपने हिसाब से चलिए। आपको आपके इस मेहनत को आपके इस जज्बे को मेरा सलाम है, और इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। सभी दोस्तों को ये बात सोचनी चाहिए कि लगातार एक शख्स इतना देर तक बोलता रहता है, 4 घंटे लगातार बोलना सहज बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई श्रोतागण ऐसे हैं जो कि ऐसी बेतुकी बातें करके और एक आरजे का ही नहीं सबका दिल दुखा देते हैं। तो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा, और सब लिसनर खुद समझदार होते हुए भी इतनी बेवकूफ़ों वाली एक आध बार बात कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी बातों से जो है आरजे का दिल दुखता है। तो ठीक है अमन भैया, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कीजिए, धन्यवाद आपका इतनी मेहनत करने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से,
1: धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं अपने मन से प्ले करने वाला हूँ, इसी इसी थीम पे है, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक। बहुत सारे फिर देख आए हुए मेरे पास और मीना चलते हैं, बहुत ही शानदार गाना है। और यहाँ पे जाकिर खान जी लिखते हैं कि सर जी आज कंसल जी का प्रोग्राम आज नहीं होगा, नहीं आज वो नहीं आएंगी, वो कहीं गई हुई हैं इसीलिए। और ये फीडबैक
1: बहुत बेहतरीन लाजवाब फीडबैक सुनील कुमार जी का, सही बात की है।
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और रणवीर सिंह जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं सर जी आपको। और संजय पटेल जी लिखते हैं बहुत ही सैड सॉन्ग है जी। अजय भगत जी लिखते हैं अमन जी रुलाओगे क्या, नहीं जी रुलाने वाले नहीं है। आज के विनोद जी को भी मुझे कॉल लगाना है, ऐसे एक गाने के बाद मैं कॉल लगाऊंगा उनको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही सुपर चॉइस है। और संजय क्या नाम है, शैलेंद्र बुलदेला जी लिखते हैं कि सुपर प्रोग्राम अमन सर जी, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत इस गाने की डिमांड है। और शिल्पा भी लिखते हैं ओ हो ये सॉन्ग यानी कि कैसे लास्ट में रहेगा, ये तो बहुत फेमस सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है जी। बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे नूर आलम जी का है, ये सुनना चाहते हैं, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। इंजॉय द ट्यून।

0: जी बहुत बहुत आपका
1: हेलो
0: वेलकम है रणवीर जी।
1: जी कौन?
0: अरे रणवीर जी के नंबर पे मैंने कॉल लगाया था।
1: हाँ हाँ
0: जरा उनसे बात करा दीजिए प्लीज।
2: हेलो
0: जी मैं आरजे अमन बात कर रहा हूँ रेडियो हॉट स्टार से।
2: सर नमस्कार जी। नमस्कार
0: नमस्कार। और आज क्या आप यानी के लीडर बोर्ड में बने हैं विनर, बहुत बहुत आपको बधाई हो।
2: जी जी जी हम तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे सर, बहुत दिनों से आपका।
0: जी तो बताइए आज यानी कि क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
2: जमाने को दिखाना फिल्म का गाना है सर।
0: तो वो कौन सा गाना है बता दीजिए प्लीज।
2: दिल लेना खेल है दिलदार का।
0: दिल
2: दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले तो नाम ना लो प्यार का।
0: ओके जी मैं इस गाने को जरूर सुनवाऊंगा आपको। जमाने को दिखाना है क्या है ना?
2: जी
0: ओके तो चलिए सुनवाते हैं आपके इस पसंद को। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। ओके धन्यवाद।

0: एक फीडबैक आया हुआ है, पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद गाना प्ले करते हैं इनका।
1: अमन भैया, आपने जो इस गीत के जरिए अपने हाले दिल का बयां किया है, बहुत ही अच्छा, और ये बात और इस गाने में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझा दिया जा रहा है, तो ये सबके समझ में आने चाहिए हर लिसनर को कि इस गाने में ही अमन भैया ने अपने दिल का हाल बताया गया है और समझा दिया गया है, तो इस बात को सबको समझ लेनी चाहिए और समझना भी ज़रूरी है। तो अमन भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है इस गाने को चलाने के लिए, लास्ट में धन्यवाद है।
0: आपका भी धन्यवाद देते हैं, और तो भाई एंजॉय कीजिए रणवीर सिंह जी इस गाने को।
2: आज की दुनिया में मजनू, फरहा, रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों, आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

बिल्कुल अब मेरे पास समय नहीं है और मुझे निकलना चाहिए फीडबैक के साथ। इसमें कोई फीडबैक नहीं मुझे सुनने को मिला है और फिलहाल आखिरी डिमांड में प्ले करूंगा दो दोस्तों की है, एक एमडी जलील जी हैं और एक हमारे क्या नाम है इनका हुकुम चंद जांगिड़ जी हैं, इनका गाना प्ले करूं और बाकी दोस्तों के गाने को मैंने इन्हें प्ले लिस्ट में लगा दिया है, वहां से आप इन सुनते रहेंगे और ये जो थोड़े से हैं पैसे एंजॉय द ट्रैक। और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर,

0: हमसे आए हमसे जाए एक झलक दिखला के।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: शौक।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, श्री एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।